खुश आई आई आई एम इन द स्टार टुनाइट सो वॉच मी रिंग द फायर एंड सेट द नाइट अलाइट शोज ऑन गेट अप इन द मॉर्निंग कप ऑफ मिल्क लेट्स रॉक एंड रोल King Kong kicked the drum, rolling on like a rolling stone.